0: भाई साहब जी को श्रवण करिए।
1: गुरु पातशाह जी की पवित्र बाणी द्वारा अपने मन दियां तारां जोड़िए गुरु चरणां नाल। हजूर ते कह रहे ने

जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान। गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हना कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहण लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, पाई साहब भाई गुरदास जी लिखते

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दिती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात है,

नानक आके भंगरना। बाबे ने जवाब दिता, हे भंगरनाथ, तेरे गुरु ने तेनू मत नहीं दिती,

0: ए सुन बचन जुगी सरा।
1: भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाके

सत युग सत गुरु वास देव भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास आप दसते हैं के वाहेगुरु अखर चार अक्षर नाल मिलके बने। पहला अक्षर जो है वा, दूसरा अक्षर हा, तीसरा गा, चौथा रा। आप कहते हैं ये चारों अक्षर चार युगों तो लिते गए। पहला अक्षर सतयुग तो सतयुग सतगुर वासदेव वाह विष्णु नाम जपा वाह अक्षर लिता है भगवान वासदेव तो। हा अक्षर लिता है द्वापर दे अवतार श्री कृष्ण जी तो हर कृष्ण हरि तो। पहला अक्षर वा तो भगवान वासदेव, दूसरा अक्षर

जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटी पठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम हर मेलो स्वामी।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिख्या रंग कुड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो

आस ओट प्रभ तोरी सबको आसे तेरी बैठा तजो सियाल सुरजनो सिमरो हर हर।

धुंद मिट गई। संसार ते पापां दी धुंद छाई होई सी, कोई कर्म कांडां विच पिया, कोई जोगियां दे पिछे पिया, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है। परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी, पाप विच रुझिया होया संसार। ते जदो अपने बढ़ाए हुए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने, के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा द्वेष दी अग विच जल रही है, ता निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सात संगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उस दी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल, कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सात संगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रहियां हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी साध संगत आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा

खेड रहा सा ते कोई लोड़वंद मेरे कोल आ गया ते मैं मुंदरी उतार के उसनु दे दीती आख्या तू अपनी जरूरत पूरी कर ले साथ सजद बोलो श्री ऐसा परोपकारी स्वभाव बचपन तो ही आ संसार ते परोपकार जो करन आए सन कौन नहीं रिया गया माता तृप्ता कोल जाके पिता कालू जी नु आख्या।

खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते सारी खेती उजाड़ दिती। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया ए तां मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता। आख्या मैं तां उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां मैनू नहीं पता। मैं तां कालू नूं सद्या। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। इदा हरजाना पर भाई

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखिया है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते

अजूनी सहवंग गुरप्रसाद तक जदों गुरप्रसाद तक जदों आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी समाध लग गई। आवाज आई ऐ नानक की कर रहे हैं ता गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे निरंकार जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक ओसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच है जुगाद विच भी सच है हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेई नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया

पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सात संगत बोलो श्री जी। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है तुसी जल उस पासे पा रहे हो, तुसी जल उस पासे क्यों पा रहे हो? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच।

कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणे। सत सगत बोलो श्री जिवे एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह बाणी विच

0: जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता।
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया।
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया। मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन में जल लग रहे हैं। थोड़े को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें तो कुछ पता हो।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी। जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी।
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक दी अलाई बाणी दा सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है। बस दरिया पार ते गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार। जो सिर साई नानवे सो सिर कफल उतार। जो सिर साई नानवे सो सिर की देखाए। उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए। बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साढ़े कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया लिए तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन में आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरियां लोड़ां। मेरियां लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो हो भी चाहिए लगे की जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो रात लंगर चो ढेड़ पड़ के बाहर थड़े दसो जाना। मैं उगनहारा कोगन पल्ले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है। उहदे दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगनहारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौराना।

अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती। किनी कया मैं कुले वडाई, किनी कया बां बो भाई। कोई कहे मैं धने पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किनी भवन

जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम हर मेलो स्वामी।

तन जियो ते को जग में, तन जियो ते को जग में, मुक्ते हर चित्त में युद्ध विचार।

बुद्ध सदी पुत जो उजारे ज्ञान की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञान की बढ़ने।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखां नूं पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत।

एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गया समुद्र बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुद्र है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुद्र विचो चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुद्र विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुद्र नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

कीर्तन करन वाला। तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार, मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करन वाला, पर मैं वेला सी। कारे कहंदे ने काम

साहब सुभाष, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हरगोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदों होए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल याद कराई।

सुत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिया मैं पंथ चलावां। मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बेको साजा। अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती गुरु साहिबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहिब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है। उस सूरत बोली मैं खालसा। गुरु साहिब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है। उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी पर किनू दया मसंदा पंडता साधुआ सन्यासिया किनू दया ये सूरत क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके लजाने जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना।

पंडितां दी प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ते सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खादा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु

जानवीचू कृपान खिची ते ललकार के कहा साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़ पहला तक किसे नु समझ ही ना आई जदू दोबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है हर पासे सहम छा गया कि एक ही हो गया गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगन लग पए तीसरी बारी सिर मंगया

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विचो बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ਉਹ ਪੰਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਗਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਤੇੜ ਕਛਹਿਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜੋ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे।

तैयार कर रहे ने। इन्हे नू सारी संगत मथा टेकन लग पई। कौन आया? गुरु साहबां दे महल माता साहब दीवा। गुरु साहबां दे कोल आके खड़े हो गए। झोली अगे कीती, झोली विच पतासे ने, ओ पतासे बाटी विच पा दिते ते मुस्कुरांदिया होया आखिया, पातशाह मेरा हिस्सा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, हां साहब देवा तुहाडा भी हिस्सा। मैं अमृत तैयार कर रहा सां मुरदिया विच नवी रूह फूकण वास्ते। जात पात ऊंच नीच खत्म करके एक नवा समाज बनाण वास्ते। पर तुसा इस अमृत विच प्यार मिठास सहनशीलता घोल दिती। हुण जदों कोई अमृत छकेगा, जे चरखनिया ते चढ़ेगा तां वी बाणी पढ़ेगा, जे किसे दी खोपरी लाई जाएगी तां वी ओह बाणी पढ़ेगा, जे किसे दा बंद बंद कटिया जाएगा तां वी ओह बाणी पढ़ेगा। अमृत तैयार हो गया। अमृत तैयार करके जिन्हें पहला सिर दिता सी दया राम ने, ओदे सामने खड़े होए। एक अमृत दा चुल्ला दया राम नूं दिता, पीण दा इशारा कीता। दया राम ने अमृत दा चुल्ला जदों पीता, एक नवी बोली दिती ते गुरु साहिबां ने कहा, कहो दया राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ते हुण पंजां दे नाम भी बदली हो गए। दया हुण दया सिंह हो गया ते तुसी हुण शेर हो। ते जिहड़ा शेर है ओह कदी डरदा नहीं। हुण तुसां जुल्म दा मुकाबला करना है, जुल्म खत्म करना है, गरीबां दी मजलूमां दी रखिया करनी। जदों पंजां ने अमृत छकिया ते हुण पंजां दे मनां दी अवस्था इह हो गई, बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाले मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हथां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनूं अमृत दिओ। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असां सिर दे के अमृत लिया, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहिबां ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका, मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया ने गुरु साहिबां नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहिबां दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तों गोबिंद सिंह। ते दूर सारियों एक साध उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे गुरु बनिया ते आपे चेला बनिया, एक नवा राह दुनिया नूं दिता। इह जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा है ते चेला हमेशा चेला। कहन लगे नहीं, जदों खालसा साजे फिर इह कहा कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच

सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच हाथ रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुखे जिन विचों मोह चुकाया मेरी तारे।

होमे हजात है होमे कर्म कमाहे होमे ही बंदना सिर तरजोनी पाहे होमे किथो पजाए किस संजम ए जाए होमे एहो हुक्म है पया किस फिराहे होमे तीर रोग है दारू थी इस माहे कृपा करे जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी शेर की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला।

आसलेसते मैं केवल ओम शब्द जगाए बोली भगत रे मन भावदे दर सोहन कीर्ति गांदे नन कर्मा बाहरे।

मत फिटे अन साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन लिखे चुरी गए तौलन तू सच्चे आइए सुच हो वे ता मत पाइए पौड़ी जिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे दे बड़े आइए आपे ही कर्म कराए दा वडो वडा वड़ मेतरी सिरे सिर तंते लाए दा नदरो पठी जे करे सुल्ताना का कराए दा कर्म।

का काहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीर छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों करा पे ही तय तारी है देख ही तया बना तरकची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण।